चौथे जरिए पे थोड़म परेंगे पुंगतरु कमिनी तरा थमजरी सी देहिदा पुंगतरु कमिनी निफु संदोक चगनी रेडियो क्लास चहुम सुपना कुंट्रा हुम दोई सुब तांकता क्लास सेवन गी मणिपुरी लिरिक लाइशु लेसन नंबर 15 महुशागुम पुंगतरे ताबा मतमदा थमजरी खुंजल नाचोम ngasigi nachom da phangbigani chautokche ima manipur taranipal suba tangkakta kala na kala gi damak theater gi guru ratan thiam ahan basaru aiba makhun mani mungsa ba thorum lanthopike da basingdi konjengbam nirmala chanu amadi konsam ajit loina na thorum putokpa wairakpam serbaje tabining beshe gi kudol da good morning manipur live phoning program thamjari pungni pagamine nifuni thoi गीत की थौरम फंगबिगनी पुंग तरा गमिनित अनि पुंग तरा मिनित कुंथ्रा नितोय संदोक चगनी रेडियो लीला सोयदन हल्लखिनी लीला इबा मुइरांगथेम इनाउ लीला पुथोकपा हेक्रुजम देवेंद्र पुथोकपा दतेंगबांगबा अथोकपम सुभाष चंद्र सिंह गुड आफ्टरनून लेडीज लाइव फोन इन प्रोग्राम थमजरी नुमित उम मतुंग मिनित तरा गीत माला की थौरम फंगबिगनी पुंग अमग मिनित तरा अरिबा फिल्म अमदि मतमिशे सिंह लानथोकतिन तहनजगनी पुंग अमग मिनित निफु वेस्टर्न म्यूजिक की थौरम फंगबिगनी महौशागुम पुंग अनि मखाय नुंगथिल पुंग अहुंग मिनिट कुंथ्रा मंगा चितप मतमदा संदोक चगनी रेडियो क्लास चहुम सुपना कुंथ्रा मरी सुब तांकक्ता क्लास सेवन गी सोशल साइंस हिस्ट्री लेसन नंबर 15 यूथ टाइम्स गाइकोता किसी थमजरी पुंग मंगा गमिनिट अनि पुंग मंगा मखाय संदोक चगनी सुमांग लीला नुशीबन हाइबनी लीला सनबीगदब डेडिकेटेड वर्ल्ड आर्टिस्ट यूनियन गी लीला कांगबु नहारो गी खोंजल फंगबिगनी पुंग तरु कमिनी तरा थौरमसीगी मोटिवेशनल प्रोग्राम द थमजरी UFSPL गी मैनेजिंग डायरेक्टर एन इराबंत सिंह उनदन वारी साबा खुंगंगी थौरम फंगबिगनी पुंग तरु कमिनी निफु ngasigi खुंगंगी थौरम गी अहानबद तहन जगनी थोकचोम अबो मैतेना खुंगबपेना मथंग दताबो फंगबिगनी सीट लॉ एनफोर्समेंट एंड सीट सर्टिफिकेशन इन मणिपुर हाइबिहिरमसिदा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मणिपुरदा सीट एनालिस्ट ओइन लेबिरिबा खोंगबान ताबम निमाइचानग उनदुना वारी साबिगदबा लाइश्रम नीलचंद्र लुइनना थौरम पुथोपा रायचंद चिंगथाम

मखल मथिल की थोरम सिंह संदोकतु ने तहन जरी बसी आकाशवाणी इम्फाल की FM संगाई चैनल दगिनी हौजिक लांथोक चरी इमाले बाग पोखरुम जब इसई सिंह मथंग मथंग होना कदोल की अहान बदल ले जरी असेम अमरजीत की खोंजल दा बिमोल चांद मंगशा ताबना सैरिंग बा इमाले बागपू खुरुम जब इसई

0: ꯏꯁꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯕꯨꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯁꯛꯈꯤ ꯏꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯉꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯣꯡꯈꯤ ꯄꯦꯟꯕ ꯅꯥꯏꯈꯤꯗꯦ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯍꯤꯡ ꯇꯨꯝꯗꯅ ꯏꯈꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯒꯠꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯔꯤꯃꯇꯤ ꯏꯆꯦꯕꯦꯝꯃ ꯅꯣꯚꯦꯜꯗꯣ ꯑꯏꯕꯒꯤ ꯂꯝꯐꯥꯡꯂꯕ ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯨꯔꯒꯁꯨ ꯏꯆꯦꯕꯦꯝꯃꯗ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯪꯈꯤ
1: ꯏꯆꯦꯕꯦꯝꯃ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯔꯅꯤꯃꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯏꯪꯂꯕ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯦꯡꯂꯕ ꯃꯉꯥꯜ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯥꯖꯒꯤ ꯐꯤꯉꯧ ꯐꯧꯔꯕ ꯊꯥꯕꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯍꯥꯛ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯈꯪꯗꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯃ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯐꯃꯨꯡꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯍꯤꯡ ꯊꯦꯡꯂꯕꯗ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯆꯤꯊꯤ ꯏꯅꯕ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯈꯩ ꯆꯤꯛꯂꯕ ꯀꯣꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯃꯤꯆꯪ ꯆꯪꯕꯤꯈꯤꯗꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯑꯩ ꯉꯔꯥꯡꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ ꯂꯦꯟꯈꯤ ꯏꯆꯦꯕꯦꯝꯃ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯪꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯜꯂꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯎꯔꯕꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯕꯨ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯌꯦꯡꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯀꯥꯎꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯀꯨꯝ ꯁꯪ ꯁꯪ ꯎꯔꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯈꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯋꯥꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯐꯖꯔꯕ ꯃꯥꯏꯊꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯛꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯆꯦꯕꯦꯝꯃ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯌꯦꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯋꯥꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯪꯅꯅꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯪꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯂꯔꯣꯏ
0: ꯃꯈꯥꯗꯤ ꯀꯝꯗꯧꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯥꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯖꯣꯛ ꯈꯔꯅ ꯍꯪꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯄꯥꯕ ꯐꯪꯈꯤꯗꯦ ꯅꯛꯅꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯗꯪꯗꯤ ꯄꯥꯈꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯀꯥꯏꯅꯊꯪ ꯀꯨꯏꯔꯕꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯏꯕ ꯃꯁꯥꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯂꯩꯔꯣꯜ ꯆꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯁ꯭ꯔꯤꯃꯇꯤ ꯏꯆꯦꯕꯦꯝꯃ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯝꯗꯨꯅ ꯑꯏꯕꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯜꯂꯛꯂꯕ ꯄꯨꯡꯐꯝꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯗꯨ ꯎꯕꯗ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯒꯨꯝꯅ ꯇꯧꯈꯤ
1: ꯏꯆꯦꯕꯦꯝꯃ ꯅꯪꯒ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯅꯪꯕꯨ ꯀꯥꯎꯕ ꯉꯝꯅꯕꯗ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯪꯗꯤ ꯈꯪꯂꯝꯂꯣꯏ ꯀꯥꯎꯒꯦ ꯈꯟꯕ ꯑꯩꯅ ꯅꯪꯇꯕꯨ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯤ ꯑꯍꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯑꯍꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯩꯅ ꯅꯪ ꯂꯥꯛꯂꯔꯣꯏ ꯈꯪꯅ ꯀꯧꯔꯤ ꯑꯋꯣꯏꯕꯃꯛ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯨꯔꯇꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯝꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯃꯨꯠꯄ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯏꯗꯣꯝ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯏꯔꯝꯕꯗꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯛꯏ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯁꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯦꯠ ꯍꯔ ꯏꯃꯦꯖ ꯍ꯭ꯋꯤꯁ ꯔꯤꯃꯦꯟꯁ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯏꯟ ꯃꯥꯏ ꯑꯥꯏ ꯗꯣ ꯀꯣꯟꯁ꯭ꯇꯦꯟꯂꯤ ꯋꯥꯁ ꯋꯤꯠ ꯇꯤꯌꯔꯁ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯃꯝꯂꯕ ꯃꯩꯈꯨ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯪꯒꯤ ꯁ꯭ꯃ꯭ꯔꯤꯇꯤꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯎꯕ ꯐꯪꯍꯟꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯪꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔ
0: ꯁ꯭ꯔꯤꯃꯇꯤ ꯏꯆꯦꯕꯦꯝꯃ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯕ ꯂꯣꯏꯗꯨꯅ ꯅꯝꯅꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯍꯧꯈꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯣꯡꯕ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ ꯃꯁꯛꯅꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯏꯔꯨꯕꯅꯤ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯣꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯈꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁ꯭ꯔꯤꯃꯇꯤ ꯏꯆꯦꯕꯦꯝꯃ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯆꯤꯛꯅ ꯈꯣꯝꯂꯦꯟ ꯇꯨꯡꯈꯨꯟ ꯇꯥꯟꯈ꯭ꯔꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯂꯩꯀꯣꯟꯗ ꯀꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯅꯨꯡ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯥꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ
1: ꯂꯥꯁꯥꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯜꯗ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯆꯦꯐꯣꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅꯤ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯥꯈꯥꯏꯒꯤ ꯆꯦꯐꯣꯡꯅꯤ ꯆꯩꯆꯠ ꯀꯨꯝꯁꯤꯡ 1996ꯗꯒꯤ 1998 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯐꯣꯡꯂꯝꯈꯤ ꯂꯥꯁꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ ꯂꯣꯜꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯁꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯊꯧꯆꯣꯝ ꯁꯣꯅꯤꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯗꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯗ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯤꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯟꯖꯔꯒ ꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕꯅꯤ
0: ꯊꯧꯆꯣꯝ ꯁꯣꯅꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯨꯡꯂꯕ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤꯅꯤ ꯁꯤꯂꯦꯠ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯒꯤꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯊꯨꯡꯂꯛꯈꯤ ढाका सहर सिलेट की कोनुंगनी ngasina bangladesh haina khangnariba bangla na mamalon oina ngangnariba lamdamni bharat amadi bangladesh apumba leibak oirami bangladesh ta pokiba manipuri maitai machani nong mathengnaki imphal mayonda navadip ta gi lakiba nimaiga saktaknaki ani wari sanaki bangla londa amana tade amana henkide kainathang amatta oiki नकना तिनकी वारी कया साखी मणिपुरी लोंदा इमा लोंदा
1: अकी अखंग लेतना इनिंगबा हाइनिंगबा हाइदुना पुथोलखी लसानी सेफोंसी मतममदुदा सिंगनाबा अमगलोइनना फोंखिबनी सेफोंगसिदा राजकुमार बिदुरना सानाबुंगी कलम अमा हांगलगा मिंगलोनगा होंग होंगदुना नैनेदुना ईखी रतनना मतम मतमगी ओइबा वारिंग सैरिंग बंगला की साहित्य की मचाक सिंह लौरगा हंदोक लगा महाक की लनाई वाखल की पोथोक होना सेम सारगा एकी आईगी पतिता जीवन कौब अपिकप वारें हापलगा एकी मसीदा आईबगी मिंगसी रतन कुमार थियाम निमाय हाइन सिजने थौचोम सोनीना अहानब चेफोंग अदुगी एडिटर ओखी अनी सुबह एडिटर रतन थियाम अमुक पुरामी चेफोंग असिदा आर्टिकल इविरखिबा लमदम सिगी अईबा सिंगदी एम के बिनोदिनी एम कीर्ति आई एस कांगजम युमलेम्बम इबोमचा ए तोम्बम मिते श्री बीरेन असिन सिंगमने अयामबदी ल स र हाइना मिंग लोटनगा मिकोक अहुम असिना ईरग फोंखी
0: ngasidi lotpa yakhitre lasani se phong phonglakpada ratan kumar amadi thauchom soni aiba oina miyamna kharadi khangna ba horakki pak chaukhraba sahitya gi ipakni piklaba su manipur aiba masak naiba kayagi loinai drabawari lakta nongju gi ahing da nganba apikpa maira oina tabli tabli chaktuna ratan kumar haina khangna duna mafam amadi leirakki मसीन अहानब खोंहौनी तुंगद करी ओइरकपा लाइबकन करी तमलीगबा होंगब नाइब पुंसिनी लोइब नाइब सु पुंसिनी पुंसिन लीरी वारी पुंसिगी पुंसिगी अर्थ करम हाइन हनगदबनो खंगदे मतमदि असुम होंगलै अहोंगब मतमबु चौखतपा हाइन कौगद्रा मतममगी मतमसु लाकदौब मतमसु मतमगी मतम गाक्तनी पुंसी से कांख्रों पानबगुम तौई असुम जंगसिन की मांगलोमदा कदाई दा करी की चली बनु खंगदे वारी दिलोइत्री उनकी बतारी अमु
2: खोंजेल ना चुम दा ताबिरे चाउथोकचे इमा मणिपुर तरानिपाल सुब तांकक कलाना कला की दमक थिएटर की गुरु रतन थियाम अहन बसरु अईबा मखोन मनी मोंगशाबा थौरम लानथोक पिखिबा सिंगदी कोंजेंगबम निर्मला चनु अमदी कोंसम अजेत लोइनना थौरम पुथोकबा वायराकबम सर्बजेत मतांगसिदा खोंजेल नाचोम संदोकचबा लोइजरी

मखल मथेगी थौरम सिंह संदुक तुना तहन जरीबासी आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल दगिनी हौजिक पुंगफम सिदा पुजरकली तोंगान तोंगान बा मणिपुरी फिल्म सैसिंग मथंग मथंग होइना

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो,
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग। मणिपुर की थौरम दा तराम ने उक्षरे ये मिंगले फम है बियो।
1: कुंभी लगा सो बदु बुआ सा खाएं बंद ने।
0: बुंगो चा बु थौरम दा तराम ने उक्षरे करी फम के कारण बेसे ताबी गनी बुंगो चा।
1: मैं मौनाओ थी दी फिल्म देखिए सूर्य न सप्तम हम उस फिल्म रोन थोड़ा मतलब तो बता अभी ताज़ा की
0: बुंगो चा इसे सु दुकी मतिक फ़ाज़बा सही सकपा सूर्यन दगी अम खन भी रहे दो इसे इसे बुंगो चा की खंजल दगी उन तंग तातुक सिदना। अतो पथोरम सिंह दिए दुमक सरु क्या बिब्रो बुंगो चा
1: आउ या जे ने
0: करी करी थोरम सिंह दी ताबी के
1: अयु की आयाम ब पुन तरह से गिर जा दुम पुन तरह बाउज में दुम आयाम बता रहे दान दन पुन निपान देगी तरह बहुत दुम साइड आने से दुम ताजे
0: अखोई की संदूक चली ब थोरम सिंह बुथो आयाम ने ताबी रंबा दुकी मती नुंगाई जे दो अदम ने खन भी रखली बैसे इसुले जरे खुदल तो जरके मैं अपने तामिन रसे
1: थैंक यू मैम
0: थागत चली।

0: राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: तुंगान तुंगान बद हुरम सिंह संदुक्तन तहन जरी बसी आकाशवाणी फागी FM संगाई चैनल दगिनी।

तोरे फिल्मसे दा रणबीर धौनाना खोंजल पीबी बदन नतना इसे यसीगी सैरांग बसु महकना उइबीरी तहन जरी बैसे यसी रणबीर धौनागी खोंजल दा खाइदेम इमोना सेरिंगबा रणबीर धौना मसामकना सैरांग बैसेनी।

मखल मथिल की थोरों का संदुकतुना धानजरी बसी आगस्पानी फाल की संगाई चैनल दगिनी हाउसिक पुंफा मसीदा मुक लांतोक चरी तोंगान तोंगान बा मणिपुरी फिल्म से सिंह मथंग मथंग होइना

0: हेलो,
1: हेलो,
0: गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: तराम नोक चरे करी करम बा
1: हेलो
0: मणिपुरी फिल्म से ही ताबी गदी।
1: मैम, इमा तंखा इसा मसेल हाँ दो लाग ब्रा
0: इमा मचेत इचा तंखाई फिल्म दगी।
1: होय नुमाई थेम इबोन सागा पुस्सा निगा सक्वा
0: होय
1: पिल मंगोन मैं कोराना सेलिंग तो अरे ताजे के मैम अदो कोई ना फंजा बने ना मैम फंजा दा वा कोई ना मैं थी अमन इधर हाथ से भी आ गया था।
0: होय होय हापियो इसे सो यम चुमना सुखन भी रे हापियो।
1: और मैम अकोई के मखा लगाए जे कि लाइसेंस में से सब ये ना मगा देगी उखम हम भी सेंग ये लेना मगा देगी हमें सुमा हम भी अमुशना ना अमत तक हाथ से गे मैम।
0: होय दुमिंग लाइफ हम सुतक पीर मुई से खन बिर पसिगे
1: मैम आइ ल मोय कोन दगे सोंग म मोंग बि बि मो तान
0: होय अदु दि इसे सु खैदान खन बिर लिबे इसे खुद तम जरागे मैम पुना नुंगाइना तामिनर से थौरम सिदा सरुगे बिर बा थाग जरी
1: मैम थाग सारी।

धन्यवाद उजीता। नमस्कार और खुरमजरी दोस्तों, मैं निंथा कुंजम रंजना आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित संगाई चैनल में।

दोस्तों आज कार्यक्रम गीतमाला में आप सुनेंगे गाने नए पुराने और आज का पहला गीत है फिल्म सपने से शंकर महादेवन और के एस चित्रा की आवाज़ों में जावेद अख्तर का लिखा हुआ और ए आर रहमान का संगीत

दोस्तों, जीवन की बगिया यानी जीवन को एक सुंदर बगीचे के रूप में देखना, जहां आप जैसे बोगी वैसे ही फल लगेंगे। अगला गीत आप सुनेंगे तेरे मेरे सपने फिल्म से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। नीरज के शब्द रचना है और सचिन देव बर्मन का संगीत।

दोस्तों, अगला गीत आप सुनेंगे आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से। अनजान की शब्द रचना है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

दोस्तों, ये गीत अभी आपने जो सुना है बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन रोमांटिक और दर्द भरे गानों में गिना जाता है। इसके अलावा ओमकारा फिल्म में भी ओ साथी रे नाम से एक बिल्कुल अलग गीत है जिसे विशाल भारद्वाज ने संगीत दिया है। शब्द रचना गुलजार के हैं और अपनी आवाज़ दी है श्रेया घोषाल और विशाल भारद्वाज ने।

दोस्तों कार्यक्रम गाने नए पुराने के लिस्ट में अब पेश है सपने शब्द पर जोर देता हुआ ये गीत। फिल्म का नाम है झुक गया आ

अब सुना जाए आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में फिल्म सत्या का ये गीत, गुलजार के बोल हैं और विशाल भारद्वाज का संगीत।

इस गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है. ट्यून करते रहें सगाई चैनल, साथ ही स्वस्थ और सुरक्षित भी रहें. आज्ञा दीजिए. नमस्कार.

0: ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯇꯥꯕꯤꯍꯧꯗꯨꯅ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯄꯣꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯅꯥꯎꯟꯁꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯃꯂꯥꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯒꯦ ꯖꯤꯇꯦꯟꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
1: ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 9ꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟꯗ ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯨꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯆꯟꯅꯐꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯡꯂꯝꯕꯝ ꯑꯖꯤꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔꯒ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥꯒ ꯎꯅꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯈꯣꯡꯕꯨꯔꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯑꯏꯕ ꯕꯤ ꯑꯦꯝ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯂꯥꯏꯄꯨꯕꯝ ꯃꯦꯝꯆꯥꯒ ꯃꯦꯔꯤꯅꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝꯒ ꯎꯅꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯇꯥꯖꯕꯗ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯈꯤ
0: ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 9 ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯨꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯆꯟꯅꯐꯝ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯡꯂꯝꯕꯝ ꯑꯖꯤꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯔꯥꯏꯆꯟꯗ ꯆꯤꯡꯊꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯈꯣꯡꯕꯨꯔꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯏꯕ ꯕꯤ ꯑꯦꯝ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝꯕꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯂꯥꯏꯄꯨꯕꯝ ꯃꯦꯝꯆꯥꯒ ꯃꯦꯔꯤꯅꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝꯅ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯦꯅꯨꯕꯂꯥ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯕ ꯃꯅꯤꯃꯂꯥꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨꯁꯨ ꯄꯥꯎꯗꯝꯗꯨꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯖꯤꯇꯦꯟꯕꯨ ꯃꯅꯤꯃꯂꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
1: ꯀꯗꯝ ꯇꯂꯥꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯔꯤꯁꯤꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤ
0: ꯀꯗꯝ ꯇꯂꯥꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯔꯤꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯥꯂꯥ
1: ꯇꯥꯃꯣ ꯏꯆꯦꯃꯗ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯖꯔꯤ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯈꯟꯖꯩ
0: ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯣ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯖꯒꯦ
1: ꯅꯅꯥꯎꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯃꯉꯥꯏꯔꯦ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗꯤ ꯐꯪꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯅꯅꯥꯎ ꯅꯠꯇꯕ ꯂꯤꯁꯅꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯅꯅꯥꯎꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯂꯤꯁꯅꯔꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯒꯨꯟꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯅꯥꯎꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯒꯗꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯕ ꯂꯤꯁꯅꯔꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯅꯅꯥꯎꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯧꯔꯨꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯃꯣꯏꯗꯤ ꯁꯦꯡꯅꯁꯤ
0: ꯃꯅꯤꯃꯂꯥꯒꯤ ꯃꯤꯅꯝꯕ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯠꯇ ꯌꯧꯔꯛꯂꯕ ꯏꯅꯥꯎꯒꯤ ꯆꯤꯊꯤ ꯅꯣꯡꯃꯇ ꯃꯤꯔꯥꯏꯖꯈꯤꯗꯦ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯃꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯅꯥꯎꯒꯤ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯃꯂꯥꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯀꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯂꯤꯁꯅꯔꯗ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯕ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯏꯅꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯂꯤꯁꯅꯔꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯤꯆꯪ ꯃꯤꯈꯥꯏ ꯅꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯁꯥꯡꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯅꯤ ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕꯅ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯁꯨ ꯍꯦꯟꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯅꯤꯃꯂꯥꯅ ꯁꯥꯈꯤꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯃꯥꯂꯥ
1: ꯑꯆꯝꯕꯅꯤ
0: ꯆꯤꯊꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ
1: ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ 1 ꯂꯥꯛ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯉꯥ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯀꯠꯆꯕ ꯐꯖꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏꯒꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯃꯨꯈꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯨꯕꯅꯣ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯁꯤꯠꯇꯅ ꯎꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯡꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯐꯖꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯅꯥꯎꯅ ꯇꯥꯖꯅꯤꯡꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯗꯤ ꯈꯟꯖꯔꯔꯣꯏ ꯂꯤꯁꯅꯔ ꯀꯌꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯡ ꯇꯥꯖꯔꯒ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒꯦ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯅꯅꯥꯎꯅ ꯇꯥꯃꯣ ꯏꯆꯦꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ
0: ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯛꯇꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯈꯣꯏꯗꯥꯕꯤꯕ ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯡ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏꯅ ꯁꯛꯄ ꯙꯅꯕꯤꯔ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯃꯨꯈꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯨꯕꯅꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯆꯨꯁꯤꯕꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯇꯦꯟꯁꯨꯕꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯁꯤꯠꯇꯅ ꯎꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯡꯂꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯃꯥꯂꯥ
1: ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ
0: ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯏꯅꯥꯎꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯅꯤꯃꯂꯥꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯖꯩ ꯏꯅꯥꯎꯒꯤ ꯅꯤꯡꯕ ꯊꯨꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯏꯅꯥꯎ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
1: ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯟꯊꯥ ꯑꯍꯜꯂꯨꯞꯇꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯅꯦꯇ꯭ꯔꯖꯤꯠꯅ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯆꯤꯊꯤꯅꯤ
0: ꯀꯣꯟꯊꯥ ꯑꯍꯜꯂꯨꯞꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯠꯇꯅ ꯆꯤꯊꯤ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯅꯦꯇ꯭ꯔꯖꯤꯠꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯂꯥ
1: ꯆꯤꯊꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯆꯦꯃ ꯃꯂꯥꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤ
0: ꯑꯗꯣꯝꯕꯨꯁꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ
1: ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯝꯒ ꯂꯥꯏꯒ ꯄꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯨꯝꯁꯨ ꯑꯈꯥꯛ ꯑꯔꯥꯎ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯈꯪꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯉꯥ ꯊꯥ ꯌꯧꯔꯛꯄꯗ ꯅꯣꯡꯖꯨꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯏꯉꯥꯎ ꯉꯥꯎꯔꯦ ꯅꯣꯡꯖꯨꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 9ꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 9:00ꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯏꯔꯣꯡꯕꯝ ꯃꯉꯥꯜꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯨꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯆꯟꯅꯐꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯡꯂꯝꯕꯝ ꯑꯖꯤꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔꯒ ꯎꯅꯕꯤꯈꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯁꯣꯅꯤꯌꯥꯒ ꯊꯧꯉꯝꯕꯤ ꯃꯩꯇ꯭ꯔꯝꯒ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯥꯡ 10ꯗ ꯎꯅꯕꯤꯈꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥ अबीर खान यारगदी अमुक्तंग ताजगे हानी बिरपसिथिनी
0: उहुम नोंजु नोंसा पुमनमक महौसा माने पिना बिबने मनीमला मक्सु नोंजु नोंसा मियाम गचप माने ना सरुक यामिनरी नत्रमला
1: अचुंबमकनी
0: हौखिब जुनगि तांग निपान कंगला चैनल द तहन जखिबा खोंचचगी वारी नि थोरमदा जापानीज लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर इरुंगबम मंगाल ग उनदुनो वारी वताई साबगी अनिसुबा अरोइब सरुक उनबिखिबी अमदि थोरम पुथोकपा नोंथोंबम रोमा लोइनना साइंस मैगजीन द तहन जखिबा खोइगी महुगी मरु ओइब चनाफम डॉक्टर मयांग लंबम अजित कुमार गाय खोइगी मिहुत नोंथोंबम रोमा ग उनदुनो वारी साखिबा थोरम पुथोकपा रायचंद चिंगथाम अदुगा संगाई चैनल द तहन जखिबा नाहरोल गी खोंजल थोरमदा RISS कॉलेज मैत्रम गी प्रिंसिपल डॉक्टर सोनिया नोमाइथेमगा थोंगमबी इरोम ग उनदुनो वारी वताइ साखिबा थोरम पुथोकपा वायराकपम सर्बजित यामख्रेने को थोरम सिंगसेमाला हरिब थोरम सिंगसिबो अदोमना नुंगाइब थोरम ओखि ताकपिरकपा मसिदिगी हेना पेनजबा करी अमा मुक लेरुखिनी अदुगा अदोमना अरोइबद तानिंगी पनबिरकप सुमांगलेला अबीर खान आकाशवाणी इम्फाल गी लाइब्रेरी दा टेकटकाइदन लैजरी मतांग चाबा में येंगदुना लीलागी पुंफमदा सोइदन लानथोकचरके अदोमबु थागचरी
1: हैरोक पार्ट 2 थोकसोम लैकाइदगी नोमाइथेम सोबाचंद्र गी सिथियसे अमु पाथोकचरके
0: हैरोक पार्ट 2 थोकसोम लैकाइदगी नोमाइथेम सोबाचंद्रना नसीदि करी वफम थंबिरकप माला
1: अहान बदा मनी मलागी थौरम लानथोपी रिबा तामो इजेमबु इगाई खुमनबु उचरी थौरम सिंह नुंगाइना ताजरी
0: नोमाइथेम सोबाचंद्र बुसु तराम ओकचरी खुरुमजरी थौरम सिंह नुंगाइना ताबिरमबगीदमकतसु थाकचरी
1: थौरम सिंह खरा पंजरबदा तांग तारा तरेट कंगला चैनल गी खोंजेल नासोमदा संदोपी खिबा अईगी अनिंगबा मियामगीदमक अदुगा नुमित अदुमकी नोंथिलपुंग अमा मिनिट तारा द संदोपी खिबा लाइरिक हाइबथिबा थौरम सिंह नुंगाइना ताजखि नुमित अदुमकी संगाई चैनल द संदोपी खिबा मतमगी वाफम लोइनना तांग तारा निपाल संगाई चैनल द संदोपी खिबा लैतारसी पुकनिंग वाखल हारिब थौरम सिंह असी ताजबदा नुंगाइब थौरम अमा ओइजखि
0: हौखिब जुनगि तांग तारा तरेत कंगला चैनल द आयु पुंग तरेत ताहन जखिबा अगे अनिंग मियामगीदमक थौरम लानथोपीखिबी कोंजेंगबम निर्मला अदुगा नुमित असिमकी लाइरिक थीबा हाइबा लाइरिक थीपीखिबा थोकचोम याइमसिंग हाइबीखिबना ओइनाम कुंजो सिंह अमदी नुमित असिमकी मतमगी वाफम लोइनना जुन तरा निपाल नुमिदांगपुंग तरेत मिनिट यांखै सेयर एंड केयर वांखै निंगथेम पुखरी मपालगी तेंबांग लोइनना पुथोकपा लैतारसी पुंगनिंग वाखल चनी अमसुबा तांकक पुथोकपा वायराकपम सर्बजित थोरम सिंह असिबु अदोमना नुंगाइना ताबिरमबा सिदगी हेना नुंगाइबा हेना पेंजबा करी अमा लेरमखिनी नत्रने माला
1: अचम्मा मंगनी
0: तुंगदसु लेप्तना अदुमक ताबियु नुंगाइरबा थोरम कया लेप्तना लानथोक पंगम जगे इनाउ नोमाइथेम सोबा चंद्रबु थागचरी
1: कसार बोनतरापुर सोइबम लैराक पुखरी अचोबम मपालदगी सोइबम चंद्र कुमार ना थाबिरक पसिथियसे अमु पाथोकजरके
0: करी करी वफम थंबिरकपा ताशिमाला
1: सैरेंग मतेक अमा अदुमक वहौदो ओइबिरै अफब समाज मियामगी खोलाव तानिंग बमपाव शान्तिगी पाउजेल वाकत लुइ ततना तेंथारुइ अरेमबदा तुमदबना अतुम बसादुना लैथोखरे ताबिनब लैतरे वाकत चबद मंगाइरे तायो नब संसार ओइरेंग सिदि एगी इरमदम नुंगसिबि कंगलैपा
0: इमालैबाक पुसैथाबा इमालैबाक पुनुंगसिजब फोंदोकपा तायो नखरे मिंगथोनब सैरेंग मतेक असी ओनथोकन फजखरे चंद्र कुमार बु थागचरी
1: तामो मनी अमदी इचेम मलाबु ननाउ सोइबम चंद्र कुमार ना इकाई खुमनबग लोइनना वहां खर हंगचेरी
0: ताकपियु करी करम वाफम ओइरबनो
1: इपा इपुगी पाउरो मतम अमकी वाहे तुम दबमीदी हौदोप वाय अतुमबमीदी हौदोप वादे हाइजेरी बवाहे सिना अहानबद थमजेरी अवाबगी तेंथाखोल वाकचरीबा मचा काइनबगी मपुरोइबा लैखिदबगी खंगन खंगन उन उन ताबीदबंगसिगी सरकार लोइसंगना एगी इरमदमगी अवाबा करी नुमित शांति लाकनी हाइब वहैसिना मिपुम खुदिंगमकी थमोइदा हंगदुन लैरब वहंग नतबर तामो मनी अमदि मलागी थमोइगी पाउदमसु ताजनिंगे
0: इरैपाक इरमदम असिगीदमक इनाउक चंद्र कुमार न वाबीबा नुंगसिबीब उजबदा चौथोकतब गमजदि अदुबु नसिगी इनाउगी चिथिगी वारोलसिदा मनीमलान पांगजरीब सिन्था आसिगा खरखजिक तायोनब ओइबनर करिनो मनीमलाद मसिगी पाखुम असिमक्ति लैतबगुम करिहागी मला
1: अचम्बने
0: करिनुमित मनीमला सन्दोई करिनुमित थागी सै सन्दोई हंगबिरकप ओइरमलबदि चपचान पाखुम पिजरंगुदबने ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯀꯔꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯅ ꯍꯪꯅꯕꯒꯨꯝ ꯃꯅꯤꯃꯂꯥꯅꯁꯨ ꯍꯪꯖꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯅꯤ, ꯉꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯅꯤ. ꯃꯅꯤꯒꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯖꯔꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯅꯥꯎ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯅ ꯄꯦꯟꯕꯤꯒꯅꯤ.
1: ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 19 ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯖꯜ ꯖꯤꯕꯟ ꯃꯤꯁꯟ ꯇꯥꯖꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯈꯤ. ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯂꯩꯇꯥꯔ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯂꯤꯂꯥꯃꯆꯥ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯏꯅꯤꯜ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯈꯤ. ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯀꯔꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯑꯃꯇꯪ ꯇꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯤ.
0: ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 19 ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕ ꯖꯜ ꯖꯤꯕꯟ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯏꯕ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯔꯣꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯔꯃ, ꯏꯗꯤꯇꯔ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝ, ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯥꯔ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯆꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ, ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨꯁꯨ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛ ꯆꯃꯜ ꯃꯍꯩ ꯌꯥꯟꯖꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯂꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯀꯔꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯃꯂꯥꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯒ ꯇꯥꯟꯅꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯖꯒꯦ, ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯒꯦ. ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯤꯊꯤ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯅꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ.
1: ꯃꯂꯥꯅꯁꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ.
2: ꯃꯅꯤꯃꯂꯥꯗꯒꯤ ꯆꯤꯊꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯀꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ. ꯅꯤꯇꯥꯏꯄ ꯆꯨꯊꯦꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯞꯅ ꯆꯤꯜꯂꯤ. ꯋꯦꯁꯇ꯭ꯔꯟ ꯒꯦꯠ ꯀꯪꯂꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯤꯇꯥꯏꯄ ꯆꯨꯊꯦꯛ ꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯞꯅ ꯆꯤꯜꯂꯤ. ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥ ꯖꯪꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯗꯥꯝ ꯂꯩꯔꯛ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤꯡ ꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯞꯅ ꯆꯤꯜꯂꯤ. ꯑꯦꯂꯥꯏꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤꯡ, ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤꯡ, ꯆꯤꯡꯉꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤꯡ, ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯔꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯦꯁꯇ꯭ꯔꯟ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ.

0: दिन झाड़ गल का झाड़ गल चनिया पमापो ओ लिंगो झाड़ गल नु थोड़ा हापो ओ ताइबंग नि पोंग बि हापो ओ कमया झाड़ गल फाइबो झाड़ गल फाइबो झाड़ो खुराई हापो ओ खुबोम छार का खोदिन छार हापो ओ खुमी छार का खुनिंग छारो ओ खुनम छार का खुंपाक छार का खुदो नाम छारो ओ खुंसा छार का खुदिन छारो तो निमई हाप का खुया था मार हापो ओ हो जिक तेरे हक चांग छावल हो रे को ओ लाइन तो लाइन मत आये छा ओ सिंगली चाव निपान भी हुन चाव निपान जिखलो ओ हो जिक तेरे चिंगो लाइन मामा ना हक चांग लापू मसे
1: Oh, my own, baby, my big girl. Oh, my own, baby, my big girl.
0: 부살로
1: 부살래
0: 사는 만나와

0: 마라타 킹덤마마 챙고 럼미고 영어강사 아이코이나 후직 파워보다 내나리바 식 라즈붓 아두가 마라타 하이브싱 아치나 마팡글 파나 챙글라팔랭악싱니 거 아두가 마시나타바 마펑 카라다 모골 싱길랭악바 카라 슐레라미 마코이디 하나기 모골 싱기 마팡글도 슈요옵다바 마탐 카라카라다 마팔람바 카라카타니고 아두가 마코이싱 시에몽나타바 그리하니 거기 람담람담기 외에 챙글락바 랭악 아두가 닝타우 싱기 레박쇼 레이고
1: 아도자 람담 람담 게 닝탐바 닝타우 반바 레락바기 타피 바시다 에코이기 마니푸르기 수크라 타피라모
0: 하게 하게 암 인트레스팅 와이카 에코이나 마망다 이닝타우 카겜바기 마람다 나이나 크레 나트라 이닝타우 카겜바세 마니푸르기 콰이데기 마틱 마타우나 라이바 닝타우 마니 마시디 노이나 하나 수카가바니까 마하기 마뚱다 라키 바닝타우 싱기 마락다기 महाराज गरीब निवास असे मणिपुर की ख्वाइदगी मतिक मथौना लैबा निंथौनी महाक असे निंथौ चराई रोंगबा अमदी महारानी नुंखिल जाईबी अनेकी मचान पा हलनिको महाराज गरीब निवास असे लांद थौबा लैंगा कहिबा खुनाई अमदी लाइनिंग लोन बु सेमदुक लंबा अमदी हिंदू लाइनिंग की ngak छेनबा मणिपुर इतिहास की यान मरोय बनिंग थौ अमनी गरीब निवास ना इहान हान बमकता चिंगी लम सिंगदा महाकी मफम सेमगतुना ngamkhaibu पाकथोक चौथोहन बतना तना मरा चेचिन हन बछु खोनरमी
1: आ
0: छिनिंग छंग को या मरुय बने गरीब निवास महाराज दी मणिपुर की पुवारी दा याम न मरुय बनिंग थौनी महाकी मरम द नैनगता पा याम न लैबनिंग थौनी को अदुना ने गावया दिहारिसे
1: होयजा
0: गरीब निवास ना कुमली सिंगा मगा चात्रे छुप नमा पंदा सिंहा छनका खि क आइबदि निंग थौ ओइ खि हबा क चिंगी लम सिंगदा मागि लेंगा मारा चिल हलब मतुंगदा महाराज गरीब निवास ना आवादा हाइबदि ने आवा हरि से बर्मा दनि को बर्मा दा लान जंगमि बर्मा गा याम न सांग ना चही कुंथ्रा मु मणिपुर गा मुक न दुना लेरमि को महाकना आवादा लंदा खिबसिंगि मनुंगदा कुमली सिंह अमगा चतेत कुंथानी पांदा लंदा खिबसे यामना मरु होइन लवि लानफमसिदा महाकना छगाइन लोकसलमी असिदा छुनतना कबो तंपाक तलाइबा शान सिंगि लेबा मचा मचा सिंगद जु लंदारमी एङो कुमली सिंह अमगा चतेत तरा तरे अमदि कुमली सिंह अमगा चतेत निफु निपान गि मरकता निंगथौ गरी बनिवास ना समशोक हाइब मफमदुदा कयारा खन लंदाकी हाइदि मसिं खंगदन लंदाकी हाइब को समशोक ता लंदाकी बगी मरमदि मखोइन मणिपुरदा लोयपोत पिगदबदो पिरकतबगिनी खंगबा ओ मतम स्वाइदा तखेल हाइबदि हौजिक ता खोइन त्रिपुरा गौरी बसे मसिना लंदार अमि अदुपु तखेल बु माइथिब पिरमि अदुना निंगथौ गरीब निवास ना लैबाक मरा चेतना मपांगल कन्न पानखि खंगबा
2: ओजा निंथौ गरीब निवास के लैंगाक लोन के मतांग द सु खरा है बिरम
0: हाय के हाय के गरीब निवास निंथौ से लांदा है सिंग बतन तना लैंगाक लोन द सु याम ना है सिंग बनिं थौ नि को महाक ना याम ना मगुल लैबा लैंगाक कांग लोन ना मा थममी लैंगाक पु कयात कया थोक ना खाइ दुख लगा मतिक चाबा फमनाय ब सिंग द मथौ अमदि दाइते सिनरमी को मसिकि मनुंगदा लैबाक कि मरुओइबा थौदानि खनबसिंग अदुदि निंथौ मचासिंगद सिनारमि महाकि लैंगाक तलौबा यामन मरुओइबा थौरममदि लंगि रेकॉर्ड निंथिजना थंबा अमदि खजना निंथिजना खोंगतबा असिनि खाङबा निंछांगुको यामन मरुओइबनि अदुगा सिंगदा चिंगि निंथौ हाइरमबसिंगसे निंथौ गरीब निवासना चिंगी खुलाकपा हाइबा फमथोनसे मछिवै नवनथोमे होजिक फावदा खुलाकपा खुलाकपा न लैबे यावरिबनि खाङबा खुलाकपा खरादा थौदोकपा स्टेटस पिरमि को खुलाकपा मगि मखादा लुपलाकपा अममम थमदुना खुलाकपा दुपु मतेंग पांगहलमे करी करी गुमबदा खुलाकपा हाइबसे खुनबु हाइबति खुनगि मपु हाइन खंगनेरमे अदुगने गरीब निवास की अतोपा यामना मरुवेबा mahiyan kiba thaurang amadine laibak wayen bichagi thauda ase ning thauna tawrambadagi phamnai ba singi mafamda sina thokhi ba sini khangaba mase mahakna nungti nungti ki chairapta ning thauna chillaga laibadudagi thadoklaga apun balengak amadi lan gi thaurang ya naba matam phangan ba oi ba yai ko adubo khanaba ma heklak ba matam dadi wayen thaudagi aroi ba warepti ning thaugi mafam da lairam asumna maharaj garibaniwas na yamna hai singna matik magun laina laibak naklami ko
1: ado oza ning thau garibaniwas se hek pan bada hindu lining ga he hek punna pale ekhoi pu hoina sikai gino mari laina bra
0: chumi chumi mari yam laine ning thau garibaniwas se hindu dharma ki vaishnavism hai batuki ithil yamna changba dik thauni mahakna ningthawa muwaina lakhalakpa thaurang amadi thabakta vaishnav dharma ki mami yamna tai maharaj hai bese mahakna laujaba ming tholni aduga maharaj hekwai paga mantri loi sangsu chengbalami guru gopal das hai ba amana garibaniwas bu hindu dharma da laiming birami mahakna lauriba dharma siti hindu dharma ki manungda chaitanya ki vaishnav dharma tuniko khangaba masigi dharma se krishna bu hena ningjaba dharma ni matungda shantidas gosai haiba dharma chandokpa lamboiba amana garibaniwas bu vaishnav dharma da ramandiki ithil kanna pekhi madugi mahaiwaina vaishnav dharma se laiba ki dharma wahenki nakhoi bu ningthem pukhri mapan da laiba ramji prabhu gi mandir hai bu ta khrab ro noi bu chalu bu ga yaw ro pro
1: ta jare ho ja
0: amado maharaj garibaniwas ki matam da charambani ko aduga ato palai sangamana mong bahan ba umang da haiti haujik na mahabali kaunari ba mapham si da lairi basini khanga ba khangje lu kaw ga nu ko
1: kaw ja ro ja
0: adu de ngasi gi di swai da sumloi salachi ko
2: hoyo ja

मखल मथिल की थरम खया संदक चरीबा एको या काशवानी वागे संगाई चैनल नी हौची मुख लान थोक चरी अदोम गे अंगक प नुसीवारी सिंबल थरम मसी गे दमक त थम चरीबा मोबाइल नंबर 9863102016 असिदा एसएमएस नत्रगा व्हाट्सएप मैसेज त अदोम गे अंगक प नुसीवारी सिंबल थाबी रखतुना थरम ताबी रिबा सिंगदा पौदम जनबगी तंजा आसी लौचरी मोबाइल नंबर अमुक सुहननिंग सिंजरी 9863102016 मोबाइल नंबर असिदा एसएमएस अमसुंग व्हाट्सएप मैसेज त अदोंगे अंगपा नुशीवारी सिंबुल इदुना थाबिरउ सोइदना पाउदम जगे कनाना खंगबा काउथोकलिरबा खुदोलगी नुशीबा वारी ओइरबसु कनाना खंगनी लाइबकके चांगेंगदा नुसी जरुबा महाकनासु अदोंगे मपाउ तानिंगदुना लेरंबा कनाना तंबंगंबा

ननाक तलेरिंगई नुंसी फोंदोकतना करमबा मतमदा फोंदोकनी नोमा फोंगे खेलिंगई फोंदोकिदाबा लोतुना असुम थमखिबा नुंसी वारी कया इरोल नुंदा लोतुना लेखिबा मसिगी वारी कया ताबिरिबा सिंगसु सोइदना तुंगान तुंगान बा मियोइदगी ताबिरमनागनी मसितनते इसा इसा दसु थेंगनाबा सोइदनी यावरमगनी थाजे पंथुंग योंगना चटमिनागे खल्लबदी नकनेरिंगई नुंसी फोंदोकपना चुमदब्राने पामुब महाकना नत्रगा पामुबी महाकना लाबना चटख्रगा निंगम लुइदबगी शरुपुदी ननाकता इनाकता लेंगदना लेहनबना फत्राने मिहौ चाउब ताइबंगसिदा नुंसीवारी लिनादुना लैहौदुना असुमक नुंसीनादुना लेबना हेना फत्राने

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ फेरोज और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 10:31 और 12 सेकंड। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। मशहूर मारूफ शायर निर्देशक और गीतकार कहते हैं गुलजार साहब आपके बाद हर घड़ी हमने आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। तो जनाब हम भी हर घड़ी आपकी यादों के साथ गुजारे हैं इसीलिए एक बार फिर से आपके दिल की बातों को लेकर हाजिर हैं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हर सिंगार में जहां पर बातें होती है प्यार मोहब्बत की और सदाबहार गीतों की जहां हर दिल में बसी होती है एक कहानी जहां प्यार है और उस प्यार में छुपे जज्बात भी। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं हर सिंगार के इस महफिल के आगाज की तरफ और बात करते हैं एक बेहद खूबसूरत नगमे की और आज के सफर का आगाज करते हैं एक ऐसे ही नगमे से जिसमें दो प्यार करने वाले एक दूसरे के दामन को कभी न छोड़ने की बातें कर रहे हैं चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। और ये नगमा है 1966 में आई फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे से जिसमें मुख्य किरदार में थे शशि कपूर नंदा बलराज सहनी निरूपा राय और दूसरे कलाकार भी। और ये वो नगमा है जिसे गाया है मोहम्मद रफी साहब और आशा जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों ने। इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और मदन मोहन साहब ने बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है इस गीत को। तो आइए सुनते हैं वही नगमा रफी साहब और आशा जी की बेहद खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम। फिल्म नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे से ये नगमा था। यह फिल्म आई थी 1966 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और सदाबहार रोमांटिक गीतों के साथ हम हाजिर हैं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हर सिंगार में, जो आपको लेके चलता है उन सुनहरी यादों के सफर पर जहां मोहब्बत की खामोशी भी बहुत कुछ कह जाया करती थी। ऐसा ही एक नगमा मैं लेकर आया हूं इस बेहद खूबसूरत संगीत के सफर में, जिसमें हम चलेंगे गुजरे जमाने की उन गलियों में जहां मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान है जो आपके दिल को छू लेगी। वैसे तो इस फिल्म के सारे ही नगमे बहुत प्यारे हैं, लेकिन ये नगमा कुछ खास है। और ये नगमा है 1976 की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म लैला मजनू से। एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ कहानियों में ही नहीं बल्कि अपने गीतों में अपने नगमों में भी सिर्फ प्यार की बातें करता है और अपनी मोहब्बत को पाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाने की बातें करता है। वैसे इस फिल्म के सारे नगमे, जैसे मैंने पहले बताया, कि बेहद खूबसूरत बहुत ही प्यारे हैं, मगर ये गीत जिसके बोल हैं लिख कर तेरा नाम जमीन पर तुझको सजदे करता है, जिसे अपनी जादुई आवाज से सजाया है दो अजीम गायकों ने, मोहम्मद रफी साहब और लता जी ने। हालांकि इस फिल्म से जुड़े कई लोगों का यह मानना था कि एक नौजवान अदाकार के लिए रफी साहब की आवाज की जगह किसी और गायक से इस गीत को गवाया जाना चाहिए, क्योंकि रफी साहब की आवाज ढलती उम्र के साथ नए कलाकार से मैच नहीं होगी। मगर मदन मोहन साहब ने सीधे सीधे मना कर दिया और कहा यह गीत ऋषि कपूर का नहीं है, ये गीत मजनू का है और रफी साहब से बेहतर और कोई नहीं गा सकता इस गीत को। और हुआ भी ऐसा ही। जब यह गीत बनकर तैयार हुआ तो हम सभी के दिल में बस गया। तो आइए सुनते हैं लैला मजनू फिल्म के इसी नगमे को रफी साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में और महसूस कीजिए मदन मोहन साहब का वो फैसला बिल्कुल सही था या नहीं। हालांकि इस फिल्म के रिलीज होने से तकरीबन एक साल पहले ही मदन मोहन साहब हम सबको छोड़कर चले गए और इसकी कामयाबी को वो नहीं देख पाए, मगर जाते जाते ये नायाब तोहफा देकर गए। इस फिल्म के गीतों को लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत नायाब संगीत से संवारा है मदन मोहन साहब ने। और बाद में हालांकि जयदेव साहब ने, क्योंकि मदन मोहन साहब की मृत्यु के बाद बाकी का संगीत जयदेव साहब ने ही पूरा किया था। तो आइए सुनते हैं वही नगमा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फिरोज अब तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हर सिंगार में, जिसमें हम आपको लेकर चलते हैं सुनहरे दौर नहीं बल्कि सदाबहार नगमों के उस सफर पर जिसमें बेहद खूबसूरत नगमे हैं, बहुत ही प्यारे रोमांटिक नगमे हैं। इस सफर में आज की शाम को और भी खास बना देता है एक ऐसा ही नगमा जो मोहब्बत की मिसाल है, एक ऐसा गीत जिसे सुनते ही दिल कह उठता है कि वाह क्या खूबसूरत नगमा है और कितनी खूबसूरत ये दोनों ही आवाजें हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अशोक कुमार, संजय खान, साधना, हेलन और रहमान वगैरह के अभिनय से सजी 1969 में आई फिल्म इंतकाम की। इंतकाम फिल्म के उस बेहद खूबसूरत नगमे की जिसको अपनी बेहद खूबसूरत आवाजें दी मोहम्मद रफी साहब और लता जी ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने, और इस फिल्म के गीतों को लिखा है राजेंद्र

कृष्ण साहब ने। खास बात यह है कि इस फिल्म में 6 गीत हैं और सभी गीत उस दौर में बहुत मशहूर हुए थे और लता जी को सर्वश्रेष्ठ गायिका के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित भी किया गया था। ये गीत न सिर्फ दो प्यार करने वालों के जज्बात को बयान करता है बल्कि कुदरत की अता की हुई उस हसीन वादियों और मौसम का भी बड़ी ही खूबसूरती से इस फिल्म में इस नगमे में बहुत ही खूबसूरती से इन वादियों को दर्शाया भी गया है। तो आइए सुनते हैं फिल्म इंतकाम का वही बेहद खूबसूरत नगमा। अगर जुड़े दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार की दिलकश महफिल में।

मोहम्मद रफी साहब और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाजों में ये नगमा था फिल्म इंतकाम से, और ये फिल्म आई थी 1969 में। दोस्तों कहते हैं कि कुछ गीत ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और भी खास हो जाते हैं, जो हर बार सुनने पर दिल को

मीठी यादों की गलियों में ले जाते हैं। ऐसा ही एक नगमा है 1971 में आई फिल्म पत्थर के सनम से। वहीदा रहमान, मनोज कुमार, मुमताज महमूद, ललिता पवार और अरुणा ईरानी के अभिनय से सजी इस फिल्म का ये गीत बेहद खूबसूरत है और उतनी ही खूबसूरती से इसको फिल्माया भी गया है। जब हम पर्दे पर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी उन्हीं वादियों में खो गए हों। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का और बेहद खूबसूरत आवाजें हैं लता जी और हम सबके प्यारे मुकेश साहब की।

0: उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं। इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
2: Every decision I've taken,
3: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। 15 people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Prime Minister Narendra Modi has stated that India is a fast-growing and credible economy and has become a reliable power. Mr. Modi said this while addressing a summit organized by a private media house in New Delhi today. He noted that several initiatives have been launched in the last 12 years with the motive of Nation First. Mr. Modi asserted that Nation First is India's highest guiding principle today.
5: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है
4: The Prime Minister said the country has witnessed and endured cycles of growth and destruction. He added that India carries the memory chip of ages within its consciousness. Mr. Modi stated that India's actions are shaping the future for the next 1,000 years. Highlighting the achievements of the NDA government over the past 12 years, Mr. Modi said mobile connectivity has been extended to approximately 45,000 villages across the country. He also mentioned that around 75,000 banking correspondents and over 6,000 post offices were established. Shiv Sena leader and Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde today announced the induction of 6 Lok Sabha MPs from the Shiv Sena UBT faction into the party. Addressing a press conference in Mumbai, Mr. Shinde welcomed the MPs Sanjay Dina Patil, Sanjay Deshmukh, Sanjay Jadhav, Bhau Saheb Bakachore, Nagesh Patil Ashtikar and Om Prakash Rajanimbalkar into Shiv Sena. Mr. Shinde said, the induction of the 6 MPs marked the second phase of the movement that began in June 2022 when 40 Shiv Sena MLAs rebelled. He said the uprising was aimed at preserving the ideology of Shiv Sena founder Balasaheb Thackeray and safeguarding the party's Hindutva principles. Indian Railways has approved the deployment of automatic train protection system Kavach on 631 route kilometers of East Coast Railway to enhance safety and operational efficiency. The Railway Ministry said the project covers 6 important railway sections of East Coast Railway, including Baguapal Budpank, Hardaspur to Paradeep, Khurda Road Balangir, Nopara Gunapur, Lanjigarh Road to Junagarh, and Bobli Salur. The Hajj Committee of India has started inviting applications from prospective pilgrims for Hajj 2027. Releasing the policy, Minority Affairs Minister Kiran Rijiju today said, applications can be submitted online through the Hajj Committee of India portal and the Hajj Suvidha app, making the process more flexible, simple and accessible. India has recorded more than 5 lakh organ donation pledges, reflecting the growing awareness, compassion and collective commitment of citizens towards the life-saving cause of organ and tissue donation. The Ministry of Health and Family Welfare said, this achievement underscores the increasing public recognition of organ donation as a profound act of humanity that offers hope and a second chance at life to patients awaiting transplantation. In shooting, India added 4 more medals at the ISSF Junior World Championship, including a gold medal by teenager Pritam Kendre at Zue in Germany to strengthen its position at the top of the medals tally. India's overall medal tally has now risen to 12, comprising 5 gold, 1 silver and 6 bronze medals. And that is the end of this news bulletin.

जोनी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:11:05 और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में हम गोल्डन एरा के उन रोमांटिक गीतों के साथ हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है और साथ ही साथ गोल्डन एरा के साथ साथ उसके बाद के दौर के भी कुछ नगमे हम आपके लिए लेकर आए हैं जिन्हें आप बेहद पसंद करते हैं और उन्हें बार बार अब गाना भी चाहते हैं गुनगुनाना भी चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं उन्हीं नगमों में से पहला नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म 1971 की रखवाला से इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में धर्मेंद्र लीना चंद्रवाकर विनोद खन्ना मदनपुरी जगदीप राकेश पांडे वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया है इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज में और साथ ही साथ उनके हैं रफी साहब संगीत है कल्याण जी आनंद जी भाई का तो आइए फिल्म रखवाला से इस सफर का आगाज करते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ फेरोज तो आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल है स्वागत है

रखवाला फिल्म का यह नगमा था लता जी और रफी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और गोल्डन ईरा के साथ साथ जो चंद नगमे हम आपके लिए लेकर आए हैं उसके बाद के वो आपको हम सुनवा रहे हैं गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। और ये जो नगमा था वो था रखवाला से, जैसा कि मैंने पहले बताया, और ये फिल्म आई थी 1971 में। 70 के ही दशक की एक और बेहद खूबसूरत फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, और ये फिल्म आई थी 1974 में। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गीत है जिसको अपनी आवाजें बख्शी हैं हम सब के चहेते मुकेश साहब और लता जी ने। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में मनोज कुमार, शशि कपूर, जीनत अमान, मौसमी चटर्जी, प्रेमनाथ, धीरज कुमार, कामिनी कौशल, अमिताभ बच्चन साहब, अरुणा ईरानी वगैरह ने बेहद खूबसूरत अभिनय किया था। और यह फिल्म उस दौर की बहुत ही खूबसूरत फिल्मों में से एक थी। उसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गीत जिसे लिखा है संतोष आनंद साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब ने। आवाजें हैं लता जी और मुकेश साहब की। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में आपके

भी फानी है, हंस के बिता ले दो घड़ी की जवानी है, और जिन वाले होर भोले भले सोना।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल गीत मेरे मन मीत में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 11:35 और 20 सेकेंड और महफिल है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मन मीत की। और गीत मेरे मन मीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से, और ये फिल्म आई थी 1968 में और ये फिल्म है जिसका नाम है साथी। सीबी श्रीधर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला, सिमी ग्रेवाल, पहाड़ी सान्याल, डेविड इब्राहिम, वीना वगैरह ने।

इस फिल्म के गीतों को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा था नौशाद साहब ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है मुकेश साहब और सुमन कल्याणपुर जी की बहुत ही प्यारी आवाज में। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में आपके लिए।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्त के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है. मैं हूं आपके साथ फेरोज और महफिल है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की. और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में उन चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं. उन्हीं नगमों में से हम कुछ ऐसे नगमे आपके लिए लेकर आए हैं जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं. और अगला नगमा कुछ ऐसा ही है. और ये नगमा है फिल्म आरती से. ये फिल्म आई थी 1962 में. फानी मजुमदार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था मीना कुमारी ने, अशोक कुमार, प्रदीप कुमार, शशिकला, राजेंद्र नाथ, केशव मुखर्जी और महमूद वगैरह ने. इस फिल्म के गीतों को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है रोशन ने. खास बात यह है कि इस फिल्म में शशिकला जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्म फेयर का पहला अवार्ड मिला था. इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं. आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आशा जी और मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आपके लिए.

सब कुछ होने के बाद जो कुछ नहीं है वही हो तुम। सब कुछ होने के बाद जो कुछ नहीं है वही हो तुम। तुम्हारे होने के बाद जो कुछ भी है वही सब कुछ है। मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:12:03। निशिगंधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज के साथ।

दो ऐसे दिल मिलते हैं जो एक जैसा सोचते हैं, समझते हैं और शायद महसूस भी एक जैसा ही करते हैं। और आपको तो पता ही है, मिलन सिर्फ दो लोगों का नहीं होता। कभी हमारा मिलन अपनी यादों से होता है, कभी किसी पुराने सपने से, और कभी कभी उस रूप से होता है जिसे हम भाग दौड़ में बहुत पीछे छोड़ आए थे। अगला गीत किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में।

वैसे वादा निभाना बहुत बड़ी बात होती है. आपको पता है जिंदगी की भागदौड़ में बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन जो लोग अपने शब्दों की कीमत जानते हैं वो हमेशा दिलों में जगह बना ही लेते हैं. और शायद यही एक वजह होती है कि ये गाना हमेशा हमें सोचने के लिए मजबूर करता है. इस गाने में प्रेम तो है ही, लेकिन बात है भरोसे की. और किसी भी रिश्ते की नींव भरोसे पर सबसे ज्यादा टिकी होती है. जिस रिश्ते में सबसे ज्यादा भरोसा होता है उसकी नींव उतनी ही मजबूत होती है. तो इस खुशनुमा रात में अगर आपको भी कोई ऐसा इंसान याद आ रहा है जिसने वादा निभाया हो, तो मन ही मन उसे ये गाना हम डेडिकेट कर सकते हैं. अगला गीत आशा जी की आवाज में.

जब रात ने घुंघरू पहन ही लिए हैं और वो भी हमारे साथ थिरकने लगी है तो फिर कोई कैसे सो सकता है। तो चलिए फिर इस महकती और चहकती सी रात में सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

گفتگو ہو اگر دلوں کے بیچ, گفتگو ہو اگر دلوں کے بیچ, حرف کچھ حیثیت نہیں رکھتے, تم کو فرصت ملے تو لکھ دینا, تم کو فرصت ملے تو لکھ دینا, خط کوئی اہمیت نہیں رکھتے. आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 101.1 MHz पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू. वक्त हुआ है 12:42 और 58 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम निशिकंधा. अगला गीत आप तक पहुंच रहा है रफी साहब की आवाज में.

आज मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने एक बात नोटिस की, बल्कि ये कहूंगी कि मैंने एक बात नोटिस की है, और वो बात ये है कि इतने सारे गानों को सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि दौर चाहे जो भी रहा हो, पर हर दौर में इश्क की भाषा एक ही होती है।

हम सभी की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी में साधारण सा दिन भी खास लगने लगता है ना। उनके होने भर से हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है और मुश्किल रास्ते आसान हो जाते हैं। रिश्तों की खूबसूरती भी शायद यही है कि वो हमें बदलते नहीं हैं बल्कि बेहतर बनाते हैं। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में।

निशिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। 1 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। अब बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई है। 6 छात्र घायल हो गए हैं और उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। अधिकतर मौतें दम घुटने के कारण हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1,000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में खरीद एजेंसियों और उपभोक्ता मामलों के विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद की समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बातचीत का मुख्य उद्देश्य खरीद में तेजी लाने, पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बाजार में जरूरी दखल को मजबूत करना था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
3: Every decision I've taken,
4: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh yesterday. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and PM Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the PM's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Meanwhile, Uttar Pradesh government has ordered a high-level inquiry into the incident. After inspecting the scene, meeting with the victims' families at King George Medical University and inquiring about the well-being of the injured, Chief Minister Yogi Adityanath convened a high-level meeting. Expressing outrage over the incident, he directed the strictest possible action against those responsible. Following the Chief Minister's instructions, a special investigation team was formed to investigate the incident. Its members are tasked with submitting their report within 7 days. Prime Minister Narendra Modi has stated that India is a fast-growing and credible economy and has become a reliable power. Mr. Modi said this while addressing a summit organized by a private media house in New Delhi yesterday. Mr. Modi emphasized that the nation-first spirit has guided India's achievements over the last decade. He noted that current decisions and actions are foundational for the country's future for centuries to come. The PM also recalled his recent participation in the G7 summit, where he observed that global leaders acknowledge India's unwavering commitment to the nation-first principle.
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है
5: The Prime Minister said the country has witnessed and endured cycles of growth and destruction. He added that India carries the memory chip of ages within its consciousness. Mr. Modi stated that India's actions are shaping the future for the next 1,000 years. Reflecting on the government's 12 years in service, the PM stated that mobile connectivity was extended to approximately 45,000 villages. He added that around 75,000 banking correspondents and over 6,000 post offices were established. Shiv Sena leader and Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde yesterday announced the induction of 6 Lok Sabha MPs from the Shiv Sena UBT faction into the party. Addressing a press conference in Mumbai, Mr. Shinde welcomed the MPs Sanjay Dina Patil, Sanjay Deshmukh, Sanjay Jadhav, Bhav Saheb Vakchare, Nagesh Patil Ashtikar and Om Prakash Raje Nimbalkar into Shiv Sena. Mr. Shinde said the induction of the 6 MPs marked the second phase of the movement that began in June 2022, when 40 Shiv Sena MLAs rebelled. He said the uprising was aimed at preserving the ideology of Shiv Sena founder Balasaheb Thackeray and safeguarding the party's Hindutva principles. Union Consumer Affairs Minister Pralhad Joshi today held a meeting in New Delhi to review the ongoing onion procurement operations with procurement agencies and officials of the Department of Consumer Affairs. In a social media post, Mr. Joshi stated that discussions focused on expediting procurement, maintaining adequate buffer stocks, and strengthening market interventions to safeguard consumer interests. In shooting, India added 4 more medals at the ISSF Junior World Championship, including a gold medal by teenager Pritam Kendre at Suhl in Germany to strengthen its position at the top of the medals tally. India's overall medal tally has now risen to 12, comprising 5 gold, 1 silver and 6 bronze medals. The second meeting of the India-Morocco Joint Working Group on Counterterrorism was held in New Delhi yesterday. The meeting was co-chaired by Joint Secretary Counterterrorism in the Ministry of External Affairs, Dr. Vinod Bahade, and head of the National Judicial Police Brigade at the Director General of the National Police of the Kingdom of Morocco, Hicham Bali. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूँ आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू. वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकेंड. गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत. कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज के साथ फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है.

फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है और आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब की, गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीत था शंकर जयकिशन का। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1961 में और इस फिल्म को लिखा, निर्मित और निर्देशित किया था नासिर हुसैन साहब ने और ये नासिर साहब की पहली फिल्म थी जिसका उन्होंने निर्माण किया था। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी देवानंद और आशा पारेख ने, प्राण ने खलनायक की भूमिका निभाई थी और राजेंद्र नाथ सहायक भूमिका में नजर आए थे। और अब हम सुनते हैं अगला गीत मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म साथी से।

फिल्म साथी से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत. आवाज थी मुकेश और सुमन कल्याणपुर की, संगीत नौशाद साहब का और गीतकार थे बजरू सुल्तानपुरी. ये फिल्म रिलीज हुई थी 1968 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था सीवी श्रीधर ने. इस फिल्म को संगीत से सजाया था नौशाद साहब ने और मुख्य भूमिका निभाई थी राजेंद्र कुमार, वैजंती माला, सिमी गरेवाल और पहाड़ी सान्याल ने. यह फिल्म 1961 में आई एक तमिल फिल्म की रीमेक थी. और अगला गीत आशा जी और रफी साहब की आवाज में.

फिर उसने मुस्कुरा के देखा मेरी तरफ, फिर उसने मुस्कुरा के देखा मेरी तरफ, फिर एक जरा सी बात पर जीना पड़ा मुझको।

मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ. गीत सुहाने प्रोग्राम का हसीन और खूबसूरत सफर आप तय कर रहे हैं मेरे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू के साथ. वक्त हुआ है 1:33 और 37 सेकेंड.

रफी साहब और लता मंगेशकर की जादुई आवाज में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत फिल्म दिल तेरा दीवाना से, और संगीत था शंकर जयकिशन का। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1962 में और ये एक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी शमी कपूर, भाला सिन्हा, महमूद, प्राण, ओम प्रकाश ने, और संगीत शंकर जयकिशन साहब का था। और इस फिल्म का संगीत काफी लोकप्रिय हुआ था और दर्शकों द्वारा सराहा गया था। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत, बहुत ही सुरीली आवाज में, अगला गीत शमशाद बेगम की आवाज में फिल्म CID से।

0: फिल्म CID से शमशाद बेगम की आवाज में सुना आपने ये गीत। ये फिल्म 1956 में आई थी और ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन किया था राज खोसला ने और निर्माण किया था गुरुदत्त ने। देवानंद शकीला, जॉनी वॉकर, केएन सिंह और वहीदा रहमान ने इस फिल्म में अभिनय किया था और देव साहब इस फिल्म में एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म का संगीत ओपी नैयर ने दिया था और गीत बजरू सुल्तानपुरी और जान निसार अख्तर ने लिखे थे। ये फिल्म वहीदा रहमान की हिंदी फिल्मों में पहली फिल्म थी। और अब हम सुनते हैं अगला गीत हेमंत कुमार की आवाज में और इस गीत को पिक्चराइज किया गया है वहीदा रहमान पर।
1: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई।

फिल्म का नाम 20 साल बाद और आवाज थी हेमंत कुमार की और संगीत भी हेमंत कुमार का। गीतकार थे शकील बदायूनी और इस गीत को पिक्चराइज किया गया था विश्वजीत और वहीदा रहमान पर। अगला गीत अब तक पहुंच रहा है मुकेश की आवाज में और फिल्म का नाम है श्री 420।

सलाम मुसलमान को सलाम, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग और सरदार जी को सत श्री अकाल। मेरी तरफ देखिए, मेरे लिबास का मुआयना कीजिए, मेरे जूते हैं जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। समझे ना भाई लोग, अपने पास एक ही चीज सोलह आने स्वदेशी है और वो है मेरा हिंदुस्तानी दिल।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई। 6 छात्र घायल हो गए हैं और उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। अधिकतर मौतें दम घुटने के कारण हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण करने, पीड़ित परिवारों से मिलने और घायलों का हालचाल जानने के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और इस घटना की जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। इस नई नीति के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो सकी उनमें निजी छात्रों द्वारा कक्षा 10 और पिछली बार दी गई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम का आकलन किया जाएगा। फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने ग्रुप जे के एक मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज के 16 गोलों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का दर्जा हासिल कर लिया है। ग्रुप जे के एक अन्य मैच में फ्रांस का मुकाबला इराक से होगा जो भारतीय समयानुसार अब से कुछ देर बाद 2:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Ashish. Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh yesterday. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and PM Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the PM's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Meanwhile, UP government has ordered a high-level inquiry into the incident. After inspecting the scene, meeting with the victims' families at King George's Medical University, Lucknow, and inquiring about the well-being of the injured, CM Yogi Adityanath convened a high-level meeting. Expressing outrage over the incident, he directed the strictest possible action against those responsible. Following the CM's instructions, a special investigation team was formed to investigate the incident. Its members are tasked with submitting the report within 7 days. On the other hand, taking swift action after the tragic fire incident, the police have registered the case against 6 people and arrested 4 of them yesterday night. 4 officials of Lucknow Development Authority, Fire Department and Electricity Department have also been suspended after directions of CM Yogi Adityanath. Prime Minister Narendra Modi has stated that India is a fast-growing and credible economy and has become a reliable power. Mr. Modi said this while addressing a summit organized by a private media house in New Delhi yesterday. Mr. Modi emphasized that the nation-first spirit has guided India's achievements over the last decade. He noted that current decisions and actions are foundational for the country's future for centuries to come. The PM also recalled his recent participation in the G7 summit, where he observed that global leaders acknowledge India's unwavering commitment to the nation first principle.
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है.
3: The PM said the country has witnessed and endured cycles of growth and destruction. He added that India carries the memory chip of ages within its consciousness. Mr. Modi stated that India's actions are shaping the future for the next 1,000 years. Reflecting on the government's 12 years in service, the PM stated that mobile connectivity was extended to approximately 45,000 villages. He added that around 75,000 banking correspondents and over 6,000 post offices were established. Indian Embassy in Doha today announced that Qatari authorities have confirmed the deaths of 12 Indian nationals in the Ras Laffan incident Sunday night. In a social media post, the embassy extended its condolences to the bereaved families and offered prayers for the departed souls. It also stated that Qatari authorities confirmed all those injured in the incident are in stable condition and receiving appropriate medical treatment. The embassy is working in close contact with Qatari authorities to provide all possible help to the Indian nationals and their families affected by this incident, ensuring the swift repatriation of the deceased remains to India. The Hajj Committee of India has started inviting applications from prospective pilgrims for Hajj 2027. Releasing the policy, Minority Affairs Minister Kiran Rijiju yesterday said applications can be submitted online through the Hajj Committee of India portal and the Hajj Suvidha app, making the process more flexible, simple and accessible. In the FIFA World Cup 2026, Argentina defeated Austria 2-0 in their Group J match in Arlington, United States to secure a place in the round of 32. Argentina captain Lionel Messi opened the scoring in the 38th minute and added a second in stoppage time. And that is the end of this news bulletin.

तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर, तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर। जब सूरज डूब रहा होगा और चांद निकलने को होगा, हम मिलेंगे समंदर किनारे, किसी हल्के से सुनहरे थोड़े धुंधलाए से रेत के घर में। ये दुनिया कभी इतनी बड़ी नहीं हो सकेगी कि तुम आ ना सको, और ना ही ये हो पाएगी इतनी छोटी कि हमें मिलने की जगह ना दे सके।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू. वक्त हुआ है 2:12:30. रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का

बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम रात के जज्बात को, रात के एहसास को, दर्द को अपनी बातों से, गीतों से और कुछ शायरी से समझने की, बयां करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर कार्यक्रम का आगाज करते हैं।

जब भी इस गाने को सुनूं तो ऐसा लगता है कि दो सहेलियां आपस में दिल के राज खोल रही हो, है ना? सच सच बताइए, इस गाने को सुनकर आपका मन बहका या नहीं? अगर आपका मन भी बहक गया है तो फिर उस खास इंसान की यादों में खो जाना चाहिए जिसे इस वक्त आप याद कर रहे हैं। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में।

वैसे मेरा नाम तो मंजू है और आप मुझे सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपने कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी महफिल में गए हो या और वहां पर किसी अजनबी से कोई ऐसा अजनबी नजर आया हो और जिसको देखकर ऐसा लगा हो कि हाँ शायद यही वो इंसान है जिसकी मुझे तलाश थी। सच कहूं तो आंखों की भाषा बहुत कमाल की होती है, हम नजरों से पहचान लेते हैं कि किस इंसान से हमारा रिश्ता कितनी दूर जाने वाला है। जब आंखों पे बात चली है, निगाहों पे बात चली है, तो एक गाना निगाहों पर और हो जाए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

कल रात तुम सपने में आए थे, कल रात तुम सपने में आए थे, हम दोनों एक दूसरे को माफ कर हंसी मजाक कर रहे थे। ताज्जुब की बात ये कि तुम्हारा चेहरा जो जहन में धुंधला पड़ गया था, रात बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, आवाज भी बिल्कुल वही, खुशबू भी वही। मैं सपने से उठकर

104.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। रात सुरमई का हसीन और यादगार सफर आप तय कर रहे हैं मेरे यानी अपनी रात की हमसफर मंजू के साथ। वक्त हुआ है 2:39 और 20 सेकेंड। रात सुरमई, जहां हम रात के सुरों को, दिल के दर्द को, इश्क के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं अपने कुछ गानों से, अपनी कुछ बातों से, सुनी सुनी रातों को, गीतों से भरने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर इसी कड़ी में सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

चुनना वाकई बहुत मुश्किल काम होता है, और अगर हामी भर ही दी है तो फिर इसे खूबसूरत बात और कुछ नहीं हो सकती। घड़ी की सुइयों के साथ साथ आपकी और मेरी मुलाकात लगातार और गहरी होती जा रही है। रात का सफर अभी लंबा है और यादों का ये कारवां रुकने वाला नहीं है। तो चलिए फिर सुनते हैं अगला गीत।

इस गाने को सुनते सुनते मैं सोच रही थी कि प्यार में जो रूठने और मनाने का सिलसिला होता है ना, यही मोहब्बत की असली ताकत होती है, यही जान होती है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा दिलबर है या कोई ऐसा है जो छोटी छोटी बातों पर रूठ जाता है, तो सच कहूं तो बहुत जल्द उसको मना लेना चाहिए। और अगर वो फिर भी ना माने तो ये गाना उसी के लिए।

तोता मैना की कहानी भले ही पुरानी हो गई हो, पर आपकी और हमारी कहानी कभी पुरानी नहीं होने वाली। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी रात सुरमई में। आज के लिए बस इतना ही। 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर आपके साथ रहेंगी वंदना चुग, मुझे यानी अपनी रात की हम सफर। मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई। 6 छात्र घायल हो गए हैं और उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। अधिकतर मौतें दम घुटने के कारण हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण करने, पीड़ित परिवारों से मिलने और घायलों का हालचाल जानने के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। इस नई नीति के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो सकी उनमें निजी छात्र द्वारा कक्षा 10 और पिछली बार दी गई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम का आकलन किया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे। जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh yesterday. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. CM Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President CP Radhakrishnan and PM Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the PM's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Meanwhile, UP government has ordered a high-level inquiry into the incident. After inspecting the scene, meeting with the victims' families at King George's Medical University, Lucknow, and inquiring about the well-being of the injured, Chief Minister Yogi Adityanath convened a high-level meeting. Expressing outrage over the incident, he directed the strictest possible action against those responsible. Following CM's instructions, a special investigation team was formed to investigate the incident. Its members are tasked with submitting their report within 7 days. On the other hand, taking swift action after the tragic fire incident, the police have registered the case against 6 people and arrested 4 of them yesterday night. 4 officials of Lucknow Development Authority, Fire Department and Electricity Department have also been suspended after directions of Chief Minister Yogi Adityanath. PM Modi has stated that India is a fast-growing and credible economy and has become a reliable power. Mr. Modi said this while addressing a summit organized by a private media house in New Delhi yesterday. Mr. Modi emphasized that the nation-first spirit has guided India's achievements over the last decade. He noted that current decisions and actions are foundational for the country's future for centuries to come. The PM also recalled his recent participation in the G7 summit, where he observed that global leaders acknowledge India's unwavering commitment to the nation-first principle.
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है.
3: The PM said that the country has witnessed and endured cycles of growth and destruction. He added that India carries the memory chip of ages within its consciousness. Mr. Modi stated that India's actions are shaping the future for the next 1,000 years. Reflecting on the government's 12 years in service, the PM stated that mobile connectivity was extended to approximately 45,000 villages. He added that around 75,000 banking correspondents and over 6,000 post offices were established.

0: दोस्तों नमस्कार, FM 16.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम हमराही और मैं आपकी दोस्त वंदना चुग।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम, तुम।
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

बॉबी फिल्म से अभी आपने गीत सुना शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज में. आनंद बख्शी की रचना थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत. दोस्तों आपको भी अगर किसी से कुछ कहना हो तो कह देना चाहिए, क्योंकि मन में बात रखकर कोई फायदा नहीं है.

फकीरा फिल्म से अभी आपने गीत सुना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। इंद्रजीत सिंह तुलसी का लिखा गीत था और संगीत रविंद्र जैन का था। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अभिलाषा फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और तर्स बनाई है आरडी बर्मन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार

0: 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत आप युगल गीत सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल पर अपनी दोस्त वंदना चौक के साथ।

दोस्तों, क्या आपने इस गीत को सुनते हुए उस दौर को याद नहीं किया जब चिट्ठी लिखा करते थे और जवाब का भी इंतजार किया करते थे। तुम्हारी कसम फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, मुकेश और आशा भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा था और धुन तैयार की थी राजेश रोशन ने। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ हद किसी से कम नहीं फिल्म से, मोहम्मद रफी और सुषमा श्रेष्ठ का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और धुन तैयार की है आरटी परमन ने।

महबूबा फिल्म से अभी आपने गीत सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी की रचना थी और आरटी बर्मन का संगीत अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आराधना फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है और धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने

0: दोस्तों अगला गीत कह रहा है जब चारों तरफ बहार है तो अब साथी को भी आ जाना चाहिए।
1: कहाँ खोई हुई हो?
2: मिलन की इन खूबसूरत घड़ियों में इंतजार की वो कभी ना भूलने वाली घड़ियां याद आ गई, जब मैं तुम्हारे लिए तड़पा करती थी, तुम्हारा इंतजार किया करती थी।
1: मैं भी तो तड़पा करता था, मैं भी तो इंतजार किया करता था।
2: उस इंतजार में भी एक अजीब मजा था। और अभी थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से दूर रहकर इंतजार की उन खूबसूरत घड़ियों में एक बार फिर से जीकर देखे जिन्होंने हमें हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया। तुम वहां चले जाओ रवि, दूर उस पार, और मैं वहां चली जाती हूँ, दूर उस पार। जाओ ना।

मोम की गुड़िया। अभी आपने इस फिल्म से गीत सुना, आवाज कितनी मधुर थी, आनंद बख्शी जी की आवाज में गीत और साथ में लता मंगेशकर थी। आनंद बख्शी जी की ही रचना थी और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दोस्तों अब

आखिरी पड़ाव की तरफ हैं और अब कार्यक्रम में आखिरी गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ चोर मचाए शोर फिल्म से गीत इंद्रजीत सिंह तुलसी ने लिखा है और धुन तैयार की है रविंद्र जैन ने

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्रों सहित 15 लोगों की मौत हो गई। 6 छात्र घायल हो गए हैं और उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। अधिकतर मौतें दम घुटने के कारण हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण करने, पीड़ित परिवारों से मिलने और घायलों का हालचाल जानने के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं। इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रविवार रात रास लाफान में हुई घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। दूतावास ने कहा है कि वे कतर के अधिकारियों के साथ मिलकर इस घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को हर संभव मदद देने और मृतकों के शवों को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के लिए काम कर रहा है। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। इस नई नीति के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो सकी उनमें निजी छात्र द्वारा कक्षा 10 और पिछली बार दी गई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम का आकलन किया जाएगा। एफआईएच प्रो लीग के लंदन राउंड के पहले मैच में भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपने कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Ashish P. Abraham. Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh yesterday. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary, Home, will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and PM Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the PM's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Meanwhile, UP government has ordered a high-level inquiry into the incident. After inspecting the scene, meeting with the victim's family at King George's Medical University, KGM, Lucknow, and inquiring about the well-being of the injured, Chief Minister Yogi Adityanath convened a high-level meeting. Expressing outrage over the incident, he directed the strictest possible action against those responsible. Following the CM's instructions, a special investigation team was formed to investigate the incident. Its members are tasked with submitting their report within 7 days. On the other hand, taking swift action after the tragic fire incident, the police have registered the case against 6 people and arrested 4 of them yesterday night. 4 officials of Lucknow Development Authority, Fire Department and Electricity Department have also been suspended after directions of CM Yogi Adityanath. PM Modi has stated that India is a fast-growing and credible economy and has become a reliable power. Mr. Modi said this while addressing a summit organized by a private media house in New Delhi yesterday. Mr. Modi emphasized that the nation-first spirit has guided India's achievements over the last decade. He noted that current decisions and actions are foundational for the country's future for centuries to come. The PM also recalled his recent participation at the G7 summit, where he observed that global leaders acknowledge India's unwavering commitment to the nation-first principle.
2: भारत जो कर रहा है, वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है
3: The PM said the country has witnessed and endured cycles of growth and destruction. He added that India carries the memory chip of ages within its consciousness. Mr. Modi stated that India's actions are shaping the future for the next 1,000 years. Reflecting on the government's 12 years in service, the PM stated that mobile connectivity was extended to approximately 45,000 villages. He added that around 75,000 banking correspondents and over 6,000 post offices were established. Indian Embassy in Doha today announced that Qatari authorities have confirmed the deaths of 12 Indian nationals in the Ras Al Khaimah incident Sunday night. In a social media post, the embassy extended its condolences to the bereaved families and offered prayers for the departed souls. It also stated that Qatari authorities confirmed all those injured in the incident are in stable condition and receiving appropriate medical treatment. The embassy is working in close contact with the authorities to provide all possible help to the Indian nationals and the families affected by this incident, ensuring the swift repatriation of the deceased's remains to India. The Hajj Committee of India has started inviting applications from prospective pilgrims for Hajj 2027. Releasing the policy, Minority Affairs Minister Kiran Rijiju yesterday said,

दोस्तों एक बार फिर से जुड़ चुके हैं अरुणिमा कार्यक्रम में गीतों के साथ और मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चुग। सुप्रभात।

दोस्तों बात तो बिल्कुल सच है कि किसी को अपना बना लेना या किसी का बन जाना ये तो अपने हाथ में ही है। बहार फिल्म से अभी आपने गीत सुना शमशाद बेगम की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और एस डी बर्मन का संगीत। दोस्तों बहुत जब गर्मी होती है ना तो इस गर्मी से राहत पाने के लिए जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो कितना अच्छा लगता है ना।

ये गीत था मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से गीता दत्त की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत था और संगीत ओपी नैयर का। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अनाड़ी फिल्म से मुकेश की आवाज में। आप सुनेंगे शैलेंद्र के बोल हैं और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों, अरुणिमा कार्यक्रम में आप गीत सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अपनी दोस्त वंदना चुक के साथ।

इम्तिहान फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, किशोर कुमार का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रही हूं जीने की राह फिल्म से, आशा भोसले, हेमलता, मोहम्मद रफी और उषा मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्तों, बच्चों की मासूमियत कितने दिल को छू जाती है ना, और मासूम बच्चों से हम बहुत कुछ कह देते हैं, जैसे चंदा को मामा। तो आज तक सभी बच्चे चंदा मामा बोलते हैं। बच्चों को जो हम सिखा देते हैं वही सीखते हैं। यहाँ भी बच्चे चंदा को ढूंढने तारों की तरह निकल पड़े हैं। अगला गीत आप सुनेंगे आशा भोसले का गाया हुआ, धर्मपुत्र फिल्म से। साहिल लुधियानवी ने गीत को लिखा है और तर्ज बनाई है एन दत्ता ने। तन्हाइयों में जब भी कोई पुरानी बात याद आती है, तन्हाइयों में जब भी कोई पुरानी बात याद आती है, आंखों में खुशी और लबों पर मुस्कान छा जाती है। यूं तो कट जाती है जिंदगी, यूं तो कट जाती है जिंदगी अक्सर अकेले में भी, मगर अपनों की याद वो कभी भी पूरी कर जाती है।

0: दोस्तों आप भी जब तन्हाई में बैठते होंगे तो कोई ना कोई अपना तो आपको भी याद आता ही होगा। अरुणिमा प्रोग्राम में आप गीत सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल पर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अपनी दोस्त वंदना चौक के साथ।
1: देख लिया कहां रहता हूं।
0: दोस्तों इंसान अपनी जिंदगी में बहुत से सपने संजोता है और उसे मालूम होता है कि वो कभी ना कभी अपने मकाम पर पहुंच ही जाएगा।
2: चलो मुझे घर पहुंचा दो।

आरती फिल्म से ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी और रोशन का संगीत। दोस्तों बहुत बार आप कहीं अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर पाते तो दिल करता है अगर अपनों का साथ होता तो सफर अच्छा कट जाता।

मोहम्मद रफी की आवाज में आपने ये गीत सुना. फिल्म थी एन इवनिंग इन पेरिस. हंसर जयपुरी ने गीत को लिखा था और धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने. अगला गीत कार्यक्रम का आखिरी गीत है. जिल थी फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में. गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन तैयार की है एस डी परमन ने.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामित अभियुक्तों और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। राज्य सरकार ने इस अग्निकांड की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। इसके लिए विशेष जांच दल गठित की गई है और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1,000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। इस नई नीति के तहत बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो सकी उनमें निजी विद्यार्थी द्वारा कक्षा 10 और पिछली बार दी गई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम का आकलन किया जाएगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। FIH प्रो लीग के तहत लंदन राउंड के पहले मैच में भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपने कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगी। 2024 में चीन के हुलूनपुर में हुई पश्चिम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ये पहला मुकाबला होगा। फीफा विश्व कप 2026 में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में फ्रांस और इराक के बीच खराब मौसम के कारण मैच रुका हुआ है। हाफ टाइम तक फ्रांस 1-0 से आगे था। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके साथ ही ये समाचार

भोर सुहानी इस कार्यक्रम में गीतों का आनंद लेते हुए एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम सब FM 100.1 MHz पर आप सभी अपने दोस्त वंदना चौक के साथ सुप्रभात।

कहते हैं ना कि इंसान तो गलतियों का पुतला है, लेकिन वो ऊपर बैठा हुआ हमेशा हमारी गलतियों को नजरअंदाज करता रहता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है।

सुख आता है, दुख आता है और फिर सुख आता है, यही क्रम चलता रहता है। दिल के घाव जख्मों से नहीं डरते, दिल को भी मालूम है कि ये रुत भी आएगी, लेकिन जो इसमें आगे बढ़ जाता है, जीत लेता है वो सब कुछ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार